0: अस्सलाम वालेकुम सामीन, पेशा खिदमत है प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं।
1: सामईन आदाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम जापानी खाने पकाए का। माह अप्रैल और मई में हम चंद सेहत बख्श खानों की तरक्की पेश कर रहे हैं। हम ऐसे खाने मुतारिफ कराएंगे जो रोजमर्रा तर्ज जिंदगी से मुतल्लिका बीमारियों से बचाव में मददगार होते हैं।
2: हमारा मौजू है हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून से बचाव। नमक का कम इस्तेमाल सेहत के इस मसले से बचाव में मददगार साबित होता है।
1: और एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारी खाना पकाने की माहिर मोहतरमा आकिको वातानाबे, जो आज हमें कम नमक से तैयार करदा एक खाने की तरकीब बता रही हैं।
3: कोनिचिवा, वातानाबे आकिको देस। क्यों त्सुकुरु नो वा गेनयेन टेरियाकी चिकन देस।
2: आदाब, मैं आकिको वातानाबे हूँ। आज हम कम नमक वाला तेरियाकी चिकन बनाना सीखेंगे। अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम तेरियाकी चिकन बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन आज की तरकीब में हम जायका खत्म किए बगैर नमक की निस्फ मिकदार इस्तेमाल करेंगे।
1: सबसे पहले चार अफराद के लिए तेरियाकी चिकन बनाने के अज्जा नोट फरमा लीजिए। आपको दरकार होगा 500 ग्राम मुर्गी का रान का गोश्त, यह हड्डी के बगैर मुर्गी के गोश्त के 2 टुकड़े। ख्याल रहे कि यह गोश्त खाल समेत हो। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी थोड़े से पोटैटो स्टार्च यानी आलू के नशास्ता, और मुर्गी को पकाने के लिए 1 खाने का चम्मच सब्जियों के तेल की। मज़ीद दरकार होगा 50 मिलीलीटर सेब का रस, 1 और 1/2 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 चाय के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच सिरका और 5 ग्राम अदरक।
2: तो आइए बनाने का आगाज करते हैं। सबसे पहले पकाने के लिए मुर्गी का गोश्त तैयार कीजिए। मुर्गी की एक रान को किसी कटिंग बोर्ड पर इस तरह रखिए कि खाल वाले सिमत नीचे की जानब हो। मुर्गी के रान के दरमियान हिस्से में एक खलासा होता है, इसी जगह से काटते हुए रान के गोश्त के 2 टुकड़े बना लीजिए। दूसरे रान के भी इसी तरह 2 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह मुर्गी के 4 फ्ले बन जाएंगे। मुर्गी की रान का गोश्त निस्बतन सख्त होता है, लिहाजा अगर आप इसे इसी तरह पकाएंगे तो गोश्त सुखड़ जाएगा और इसे मुकम्मल तौर पर गलाना मुश्किल होगा। तो आइए पहले इन टुकड़ों की मोटाई बराबर कर लेते हैं।
1: छुरी को हर फिले के वस्त से उफकी गुजारते हुए अतराफ के सिरों तक इस तरह ले जाएं कि गोश्त का टुकड़ा दाएं और बाएं खुल जाए। ख्याल रखिए कि सिरों पर गोश्त को जुड़ा रहने दीजिए। गोश्त की मोटाई का अंदाज़ा लगाते रहिए और एक वक्त में एक जानिब से काटिए। गोश्त की मोटाई को एक जैसा बनाने के लिए कटाई का दुरुस्त अंदाज़ा कीजिए।
3: होचो नेसेते तेमाई नि हिकु योउ नि शिते कित्ते इकिमासु गा हासाकि नो तोकोरो।

0: を使いながら少しずつ切っていく
1: フレ
0: と、
1: ームへシガフ
0: この
1: लगाने
0: 状
1: के
0: 態
1: लिए
0: ですね、
1: छुरी
0: 確
1: को
0: 認できま
1: कटिंग
0: す。
1: बोर्ड के मुतवाजी रखिए और छुरी की धार गोश्त से गुजारते हुए अपनी जानिब लाइए। हमवार अंदाज से काटने के लिए छुरी की धार के नोक वाले अगले हिस्से को इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता काटें।
2: चिकन को इस अंदाज में काटने के बाद इसे खोलिए। फिले के दूसरे हिस्से को खोलने के लिए भी इसी तरह कट लगाइए। गोश्त के वस्ती हिस्से से एक तनासब के साथ अतराफ की जानिब काटने की तरीक़ाकार को जापानी में कानोन बिराकी कहा जाता है। यह नाम बुद्धा के मुजस्मे कानोन को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिब्बों से निकला है। इन डिब्बों के दरवाजे इसी तरह वस्त से अतराफ में खुलते हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी में इस अंदाज में खुलने वाले दरवाजों या काटने के इस तरीके को फ्रेंच डोर कहा जाता है। उर्दू में इस तरह दरवाजा खुलने को हम दरवाजे के पट वा करना कहते हैं।
1: अब चिकन फ्ले की सतह अपने साइज से दुगनी हो गई है और इसकी मोटाई पहले के मुकाबले में निसफ रह गई होगी। मुर्गी के चारों फ्ले इसी अंदाज में काट लीजिए। एक ट्रे में पोटैटो स्टार्च फैलाइए और फ्ले ऊपर रख दीजिए।
2: फिले की दोनों अतराफ पर अच्छी तरह पोटैटो स्टार्च लगाइए। एक पतली और हमवार तह के लिए काफी ज्यादा स्टार्च इस्तेमाल कीजिए और फिर हाथ से थपथपाकर इजाफी स्टार्च हटा दीजिए। इसके बाद तेरिया की सॉस बनाने के लिए मसालों को मिला लीजिए। आज की तरकीब में सॉस को कलीदी हैसियत हासिल है। आमतौर पर तेरिया की सॉस की तैयारी में सोया सॉस और चीनी जैसे बुनियादी अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सोया सॉस में सोडियम की काफी ज्यादा मिकदार पाई जाती है, लिहाजा हम सोया सॉस की मिकदार को निस्फ करते हुए सेब का रस, सिरका और कद्दूकश की गई अदरक इस्तेमाल करेंगे। भरपूर महक के साथ इन मसालों से डिश का मजा दोबाला हो जाएगा और कम नमक से बनी एक बहुत फायदेमंद डिश तैयार हो जाएगी।
1: एक छोटे प्याले में सोया सॉस और चीनी डालकर मिलाइए। अब इसमें सिरका, कद्दूकश की हुई अदरक और सेब का रस भी डालिए और यकजा करने के लिए अच्छी तरह हिलाएं। अब सॉस तैयार है, तो आइए मुर्गी को पकाने का आगाज करते हैं।
2: तमाम फिले एक साथ पकाने के लिए एक बड़ा फ्राई पैन इस्तेमाल कीजिए। पोटैटो स्टार्च में तेल जज्ब हो जाता है, लिहाजा अमूमी मिकदार से कुछ ज्यादा तेल इस्तेमाल कीजिए। जब फ्राई पैन गर्म हो जाए तो इसमें इस तरह फिले रखिए कि खाल वाला हिस्सा नीचे की जानिब हो।

0: वाली चिकन तेरयाकी की इस तरकीब में ऐसी ही आम तरकीब के मुकाबले में नमक की निस्फ मकदार इस्तेमाल की गई है, लेकिन फिर भी ये रस, सिरका और अदरक की वजह से मज़ेदार लगता है। कम नमक वाली गजाई आदत बरकरार रखने के लिए तेज़ जायकों वाली अशिया इस्तेमाल करना एक तरीका हो सकता है।
1: एक और तजवीज़ सोया सॉस का मौसर इस्तेमाल है। अगरचे इसमें सोडियम की काफ़ी मकदार मौजूद होती है, तहम इसमें नमक की सोडियम की मकदार महज पाँचवा हिस्सा होती है। अपने मुनफरद जायके की वजह से सोया सॉस की थोड़ी सी मकदार का इस्तेमाल ही तसल्ली बख्श होता है। थोड़ी सी मालूमात से हम अपनी गजा में नमक की मकदार कम कर सकते हैं। हमने खाना पकाने की अपनी माहिर आकीको वातानाबे से पूछा कि वह अपने रोज़मर्रा पकवानों में कम नमक का इस्तेमाल कैसे करती हैं।
2: 和食では煮物も多いんですが、煮物ってどうしても塩分が高くなりがちなんですね。
0: ジャパニー खानों में स्टो और उबाल कर बनाए जाने वाले तरह तरह के खाने शामिल हैं, जिनमें सोडियम काफी मकदार मौजूद होती है। खासतौर पर स्टो, जिसमें हम चाहते हैं कि जायका खाने के अंदर तक जज्ब हो जाए, तो हाल ही में मैंने दाशी यखनी में स्टो के अज़ा डालकर पकाए और मसाले पकाई के आखिरी मरहले में डाले ताकि खाने की ऊपरी सतह के जायके में इजाफा हो जाए।
1: क्योंकि हमारी जुबान खाने की ऊपरी सतह को सबसे पहले छूती और चखती है, लिहाजा अगर इसका जायका अच्छा होगा तो खाना भी मजेदार लगेगा। मोहतरमा वातानाबे एक और मशवरा भी देती हैं।
0: मैं कोशिश करती हूँ कि जिस कदर हो सके ऐसी सब्जियाँ और फल खाऊं जिनमें पोटेशियम की ज्यादा मकदार मौजूद हो, क्योंकि पोटेशियम इजाफी नमक को ख़त्म करता है। आलू, सेब और केले इस किस्म की गजाइत के हुसूल का बेहतरीन जरिया हैं।
1: आज की तरकीब का एक जुज सेब का रस था। अगर पोटेशियम को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे जिस्म से इजाफी नमक को ख़त्म करता है।
0: सेहत बख्श खुराक इस्तेमाल करने के कई उम्दा तरीके हैं। जापान में खाना पकाना सिखाने वाली ऐसी क्लासेस और वेबसाइट्स बहुत मकबूल हैं, जहां खानों की वो तरकीब मुतारिफ कराई जाती हैं जिनमें सोडियम का इस्तेमाल कम हो। हमें उम्मीद है कि आप सब नमक का इस्तेमाल कम करने और सेहतमंद रहने की कोशिश कर सकते हैं।
1: सामिन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। आज हमने कम नमक वाला तेरियाकी चिकन बनाना सीखा। हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ ही रहेंगे।
0: वसीमा, आज की डिश बहुत ही आसान थी और यकीनन मजेदार भी होगी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, मज़ेदार तो हो सकती है क्योंकि इसमें ये जापान की सोफिया बड़ी मकबूल डिश है और बड़ी जल्दी बन जाती है। आप बनाती हैं ना?
0: बिल्कुल, अक्सर बनाती हूँ, लेकिन आज की तरकीब की तरह कभी सेब का जूस इस्तेमाल नहीं किया मैंने।
1: वैसे सोफिया, बड़ा अच्छा आइडिया है कि नमक की कमी को सेहत बख्श अज्जा से पूरे करने का। वैसे सोचकर ही मुँह में पानी आ रहा था कि कितने मज़े की डिश होगी और ऊपर से खस्ता और अंदर से जूसी। भाई
0: वापस आ जाएं गुल ख्यालों की दुनिया से। आज की तरकीब में वदनाबे साहब ने पोटैटो स्टार्च इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तेरियाकी चिकन ऊपर से खस्ता होती है।
3: लेकिन सोफिया जी, अगर पोटैटो स्टार्च दस्तयाब ना हो तो हम आम कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो मैदा भी इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को ज्यादा मीठा पसंद ना हो तो चीनी की मकदार को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जूस भी तो मीठा होता है ना।
1: क्या बात है, वैसे लो सोडियम लो शुगर। वैसे खवातीन, अब आपको अपनी सेहत का जरा ख्याल रखना चाहिए, नमक चीनी का इस्तेमाल कम करें। तो ये बताइए कि आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है?
0: मैं काफ़ी खाने पकाती हूँ घर में, और उनमें सोया सॉस, मिसो, दाशी बुनियादी अज्जा होते हैं, और इन सब में होता है नमक। और कई डिशेज में तीनों का एक साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नमक की मकदार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ महीनों पहले मैं करीबी स्टोर में शॉपिंग कर रही थी तो अचानक मेरी नज़र पड़ी 50% कम सोडियम वाले सोया सॉस पर। मैंने उसे जल्दी से खरीद लिया और अब मैं वही इस्तेमाल करती हूँ।
1: अच्छा,
0: मेरे ख्याल में बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा नमक खाना ठीक नहीं है।
1: भाई, हमारे घर में भी सोया सॉस काफी इस्तेमाल होता है। अब मुझे ये बताएं कि मैं जाकर खुद खरीदूं कि आप ला कर देंगी मुझे?
0: नहीं नहीं, मैं आपको दे दूंगी, बल्कि मैं नाम भी दे दूंगी आपको, जो भी आपको समझ में।
1: अच्छा,
0: लेकिन सोया सॉस और मिसो पेस्ट वगैरह लो सोडियम वाले अज्जा जो हैं वो भी गुल आजकल मिल जाते हैं हर जगह। बल्कि आजकल तो लो सोडियम नमक भी दस्तियाब है हर स्टोर पर।
3: यानी कम खाया पर खाया जरूर, चटखारा लिया और सेहत का ख्याल भी।
1: और मेरे ख्याल में हमें ना सिर्फ जापानी बल्कि आम खानों में भी नमक की मकदार कम ही रखनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और जनाब लो सोडियम अज्जा का इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े।
4: जी सामीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, जिसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।